उजाला रेडियो देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने।

दिन कोटरावा तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुन वालों तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो दिस खाई बिनकोट रहा तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है, नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

0: Ruud Oudin. Subha Oud Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl, 15 आवाज़ें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

और तुम कितनी सुंदर हो। फिल्म मोहरा का गीत उजाला रेडियो पर आप सुने। Wilt u ons bellen, dan altijd tijdens kantooruren op het nummer 020 409 0807.

0: उजाला रेडियो पर संगीत का सफर जारी है।
1: जब तन पे तरंग रुपया बिखरती है, वहाँ रंग अपना जमाता है गाना। धीरे धीरे वो वक्त आया मिलन का, जहाँ शर्म पर्दा हटाता है गाना। तो क्या हुआ,

0: live vanuit de Hoofdstad. उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो, उजाला ही उजाला देश भर में। हाँ, हर गांव में, हर कोना में, ऑटो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए। उजाला इस फन हेल नीदरलैंड, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van...

मून संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

I have been a great admirer of this wonderful person, Mohammad Rafi. मैं हमेशा सोचता था कि भाई ये ऐसे टैलेंट बहुत रेयरली मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट में मैं करता था उनको. रफ़ी साहब हमारे हिंदुस्तान के संगीत जगत में मेल सिंगर की हैसियत से सबसे बड़ा गाने वाला है.

ठोकरे खा खा पता चला, फिदा जिस पे होते थे, एक सांप हमारा यार था, हम सांप के साथ सोते थे, हम सांप के साथ सोते

चेहरे पे गुस्सा है, चेहरे पे गुस्सा मगर खूबसूरत है, चेहरे पे गुस्सा मगर

एंड सुपर गाना इज दिट दिल वाले चोर द न्यू फिल्म पति पत्नी और वो दो यू हो देन द लीड वोकल्स आदित्य रिखारी एंड श्रेया घोषाल ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड न्यू एट ऑन द फैक्ट्री द हिट मशीन फन उजाला रेडियो लाटू इवन लेकर लंग गान गेनीते फन दिस प्राख्टिगे 90s ऑन द बीट ऑफ नदीम शिरवन और गाना का बोल है तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी मेरा साया साथ होगा

प्रख्तक साउंडट्रैक जो दिल को छू करते हैं और घुस जाते हैं तो दिल में जुनून से भरा हुआ फॉल पासी प्रख्तक साउंडट्रैक फन सानू एंड अलका द बेस्ट ऑफ द 90s हमने आपको सुनाए ऑन बीट ऑफ नदीम श्रवण एंड नॉक फोर फाइव फरास के मेट एन हेल हुए सोनू निगम एंड अलका याग्निक ओक ऑन बीट ऑफ नदीम श्रवण Pandibar the catchy musicians, electronic dance musical composers in the jaren 90. Ze hebben furor gemaakt met hun trange, vette arrangementen. Ook deze was erg populair uit de film Ek Hasina, Ek Diwana. Ek Hasina Thi, Ek Diwana Tha. Haste, haste. Het waren Yasser Desai en Palak Muchal.

खुल्लम खुल्ला हवाओं में ऐसा गाना तो होना ही चाहिए। हीरो तिरंदी उजाला किस बेनकवात ऑफिसेस एंड एक हैप रेडी फायर एन इलेक्ट्रिफाइंग डांस ट्रैक इन द लीड वोकल्स अरिजीत सिंह फीचरिंग इन लेडी बी कॉम्ट द बेकेंड फिल्म जब हैरी मेट सेजल एंड दी फिल्म हॉर ये दैट प्रख्त लीड बीच बीच में या बीच बीच में

0: mix van Arjun Kanungo uit de UK. Ja, ja. Een prachtige soundtrack. Een mooie memory. Die moet een verrassing zijn voor het begin van de vooravond die op Trendy in de hitzone vanavond. Maar eerst heb ik een goede 70s sfeer. En om het geheugen een beetje lekker op te frissen, hoor je de dialoog van Rajendra Kumar en Rakhi. On the beat of Shankar en Jai Kishan. Aan baan ka ek aur gana hum aapko sunayenge.
1: चलो मालगन के पहुंच वो आई से इनमें और हम में कोई फर्क नहीं। लाओ बेटा लाओ इनका दुपट्टा वापस कर दे।
2: इसे अपने पास रखिए।
1: अरे सुनिए तो सही, यूं रूठ कर मत जाइए। देखिए हम पड़ोसी हैं, अब तो हमने सामना होता ही रहेगा, जिंदगी भर का साथ है। आप इस तरह नाराज होकर जाएंगी तो देखिए मेरा दिल टूट जाएगा।
3: ए ऊपर देखो या नीचे, आगे देखो या पीछे, या

और रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो, तू जाने।

बिल्कुल ट्रावल तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं सुनवालो, तो डीजे आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel het, door shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

खुशी के साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। हौफ दौरब से परिवार ओरी और परिवार कुंदन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बुध को 70 साल के आयु में जीवन तक यार औत श्रीमती मिली ओरी कुंदन का पति लड़कन सुषमा शालिनी सरेशा और सूरज के पिता हॉवर्ट वीरेन और राकेश के ससुर जिया एलिस कीरा और वेस्ली के नाना स्वर्गीय पिता श्री जगमोहन ओरी और स्वर्गीय माँ श्री किसुंदी रामाधीन के बेटा हौफ दौरब का रहने वाला श्रीमान सुंदर ओरी के मृत्यु हौफ दौरब में निवास स्थान पर हो गई है। हौफ दौरब से परिवार ओरी कुंदन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बुध 29 तारीख अप्रैल को 70 साल के आयु में जीवन तक यार औत श्रीमती मिली ओरी कुंदन का पति लड़कन सुषमा शालिनी सरेशा और सूरज के पिता हॉवर्ट वीरेन और राकेश के ससुर जिया एलिस कीरा और वेस्ली के नाना हौफ दौरब का रहने वाला श्रीमान सुंदर ओरी के मृत्यु हौफ दौरब में निवास स्थान पर हो गई है। स्वर्गीय पिता श्री जगमोहन ओरी और स्वर्गीय माँ श्री किसुंदी रामाधीन के बेटा जो था। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आने वाले इतवार के दिन में 1:30 बजे से 2:30 बजे तक जोंदख आंस्टांद फन हाल्फ ट्वी तोत हाल्फ द्री उत्फार्ट सेंट्रम वेस्ट खार्द के मुर्दालय ओक मेरवेख 275 ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार मई के 5 तारीख के दिन में 5 बजे किए जाएंगे। वेस्ट खार्द क्रिमेटोरियम ओक मेरवेख 275 ओक मेरवेख 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए। उजाला रेडियो के साथ आखिरी सफर एतफार्थ फ्रसोर्खिंग इन सभी परिवारों यानी कि परिवार ओरी और परिवार कुंदन के दुख में शामिल है।

और यहीं से सुनने वालों शोक प्रोग्राम यादें आप सुनेंगे। और भजन जो आप सुनेंगे तो ये पेश है हौफ दौरप के रहने वाले श्रीमती मिली ओरी कुंदन के तरफ से स्वर्गपति दरकन सुषमा शलिनी सरेशा और सूरज के तरफ से स्वर्गीय पिता हावर्ड वीरेन और राकेश के तरफ से स्वर्गीय ससुर जिया एलिस कीरा और वेस्ली के तरफ से स्वर्गीय नाना स्वर्गीय श्रीमान सुंदर ओरी के याद में 70 साल की आयु में बीते बुध इनकर मृत्यु हौफ दौरप में निवास स्थान पर जो हो गई है। तो इन्हीं के याद में अगला गीत प्रोग्राम में पेश है।

और गीत अभी आप प्रोग्राम में जो सुने तो ये पेश की गई है होफ दौरब से श्रीमती मिली ओरी कुंदन के तरफ से स्वर्गीय पति और लड़कन सुषमा शलिनी सरेशा और सूरज के तरफ से स्वर्गीय पिता हॉवर्ट वीरेन और राकेश के तरफ से स्वर्गीय ससुर जिया एलिस कीरा और वेस्ली की तरफ से स्वर्गीय प्यारा नाना स्वर्गीय श्री सुंदर ओरी की याद में बीते बुध 70 साल की आयु में इनकर मृत्यु निवास स्थान पर होफ दौरप में हो गई है। तो इन्हीं की याद में और इनकर आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करते हुए ये भजन प्रोग्राम में पेश की गई है। और यहीं तक आप उजाला रेडियो पर सुने शोक प्रोग्राम यादें।

तुम जो मिल गए हो तो लगता है कि ये जहां मिल गया। मोहम्मद रफी साहब एंड लता जी भी। फिल्म हंसते जख्म से आप गीत को सुने और ये उजाला रेडियो है सुनने वालों।

फिर ना होना जुदा, अब ये वादा रहा। किशोर कुमार एंड आशा जी, फिल्म ये वादा रहा का टाइटल सॉन्ग आप सुने। उजाला रेडियो है ये सुनने वालों। वेबसाइट पर सब इन्फॉर्मेशन आपको दिया जा रहा है www.ujala.nl।

लता एंड मुकेश जी से आप सुने। फिल्म का नाम रोती कपरा और मकान, स्टेशन उजाला, और आप तो जानते ही है अंधेरा में सभी लोग क्या ढूंढते हैं, उजाला। तो जाने है तो टार का नंबर एडमिनिस्ट्रेशन पर 020 409 0807।

खुला आसमां सो गया, अमिताभ बच्चन की आवाज। फिल्म सिलसिला का गीत सुने आप उजाला रेडियो पर। मोई लगे है तो सुनना, एक और गाना पेश है।

फिल्म गुरु, हाँ फिल्म गुरु का गीत आप सुने, एंड यही यही किस फॉर ओजाला रेडियो ओम दत्त यही हेथ फर्स्ट हिल होर्ट या चौख।

ना कंजरे की धार और ना तो मोतियों की हार, फिर भी तुम कितनी सुंदर हो। फिल्म मोहरा से आप सुने साधना सरगम एंड पंकज उदास से। उजाला रेडियो है ये सुनने वालों। फॉरेन रियाक्सी स्टूडियो में उच्चनार इन्फो आप स्टार्ट उजाला.nl तेर अटेंसी फॉन विजय।

एंड टिक टिक टिक टिक टिक फिल्म हम जोली, हाँ फिल्म हम जोली के गीत जिसमें काम किए थे उन दिनों जितेंद्र एंड लीना चंद्रवरकर।

नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शहीद गुलजार। यह है यू आर उजाला रेडियो, जो आप सुन रहे हैं। हमारे सभी श्रोताओं को शुभ दिन, मुबारक दिन अर्ज की जा रहे हैं स्टूडियो से। आप हमें जहाँ से भी सुन रहे हैं, प्रोग्राम को आप सुनते रहना और सुनते ही जाना। लीजिए, फर्स्ट सिलेक्शन आपकी खिदमत में नशर है। परी हो आसमानी तुम, मगर तुमको तो पाना है। फिल्म का नाम जमाने को दिखाना है। गाने वाले फनकार शैलेंद्र सिंह।

0: अजी पाना है तुमको तो पाना है, परी हो आसमानी तुम मगर तुमको तो पाना है।
1: कैसे करते हैं मोहब्बत, कैसे करते हैं जमाने को।
0: शैलेंद्र सिंह, आशा भोसले और साथियों की आवाज में फिल्म का नाम है जमाने को। दिखाना है सन 1981 का फिल्म, 1981 का फिल्म। मिले जुले संगीत में हम आपको अब प्रोग्राम में सुनाने वाले हैं फिल्म का नाम फटा पोस्टर निकला हीरो। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी। लीजिए मिले जुले संगीत में आतिफ असलम की आवाज।

मैं रंग शरबतों का, तुम मीठे घाट का पानी, क्या गाना है। फिल्म का नाम फटा पोस्टर, निकला हीरो। यू आर उजाला रेडियो के सभी श्रोताओं के मनोरंजन के वास्ते कुछ मिले जुड़े संगीत मिक्स मार्क्स सॉन्ग्स आज का पैगाम में पेश की जा रहे हैं। और आइए एक और नगमा हम आपको सुनाने वाले हैं, गोल्डन ओल्डी नगमा, द नाइटिंगेल, लता मंगेशकर की आवाज में। कांटा लगा, अब कांटा कहाँ लगा, क्या बात है। आइए सुनते हैं कि कांटा कहाँ लगा।

0: for music.
1: Enjoy the vibrations of Ujala Radio wherever you are.
2: You are. You are.
3: The most sensational and
4: the best. The
5: best.
1: शुरू का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आपसे मैंने मेरी जान

से मैंने मेरी जान मोहब्बत की है, आप चाहे तो मेरी जान भी ले सकते हैं। शुरू का बादशाह मोहम्मद रफी साहब और द मेलोडी क्वीन आशा जी की आवाज़ में आप नहमा भी उजाला रेडियो के जरिए सुने हैं। और ऐसे में शाम ढले खिड़की टले, तुम सीटी बजाना छोड़ दो। यूआर के सभी श्रोताओं को शुभ दिन, मुबारक दिन अर्ज है। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं, आप सभी खुश रहे और सलामत रहे।

0: मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे तो चलते ही जाना है। हसीनों के पुजारी किशोर दा की आवाज आप अभी उजाला रेडियो के जरिए आप सुने हैं। रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामकाज के वास्ते आप डायल करें एमस्टरडेम में 0204-09-08-07 पर 020-409-08-07 पर, या आप लिख सकते हैं info@ujala.nl। जस्ट एंजॉय द वाइब्रेशंस ऑफ यू आर उजाला रेडियो। रेडियो तू जाने है तो
1: द मोस्ट सेंसेशनल एंड
2: द बेस्ट।
0: मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे। आइए मिलकर सुनते हैं शानदार सा भजन। ये भजन थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, इसीलिए आप इत्मीनान से बैठकर आप ये सिलेक्शन ये भजन सुनिए। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे।

कन्हैया की बाल लीलाओं में सबसे नटखट माखन चोरी, उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है। कन्हैया आस पड़ोस के घरों में जाते थे माखन चुराने, और जिसके घर माखन चोरी होती वो गोपी आ जाती शिकायत करने यशोदा के पास कि देखो तुम्हारे बेटे ने हमारे घर बहुत नुकसान किया, बड़ा उपद्रव किया। यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, पूछती ये सब क्या करके आए, देखो सब शिकायत करने आई हैं। और कन्हैया बड़े भोलेपन से कह देते, मां मत सुनना सब झूठी, ये तो सब बहाना बना के आई है मुझे देखने, और बात समाप्त हो जाती है। लेकिन आज कन्हैया ने अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में मां अचानक पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या, अचानक पूछा था। तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया,

क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है, आप सभी जानते हैं। कन्हैया ने माखन खाया है और मां ने देख लिया, दोनों जानते हैं माखन खाया है। मुख से निकल गया, मैं नहीं माखन खाया। कन्हैया ने कहा मुख से निकल गया तो क्या हुआ, अभी सिद्ध कर देते नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तर्क दिए, मां को ऐसा समझाया कि अंत में मां ने कह दिया हां बेटा तूने माखन नहीं खाया। सबसे पहला तर्क दिया, कहने लगे मां ये तुमने सोचा कैसे मैंने माखन खाया, तुम्हें तो मालूम है कितने काम है मेरे पास,

यहां दो समय का वर्णन हुआ है, भोर और सांझ। भारतीय शास्त्रीय संगीत में अलग अलग समय के अलग अलग राग हैं, मौसम तक के भी राग हैं। तो भोर सुनिए भोर की राग, राग भैरव, सांझ राग यमन कल्याण। शायद आपको समय का आभास होगा।

ना चला ये तर्क, दूसरा तर्क दिया। कहने लगे माँ ये तुमने सोचा कैसे मैंने माखन खाया है? तुम्हें तो मालूम है छोटा सा बालक हूं, छोटे छोटे हाथ पैर हैं मेरे, और माखन तुम कहां टांग के रखती हो।

इशारा किया कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो, ये जो मुंह में माखन लगा है कैसे लग गया। कन्हैया ने सोचा आज तो फंस गए, भूल हो गई, तुरंत उत्तर दिया।

कोई असर नहीं माँ पर। अब कन्हैया ने माँ की खुशामद, माँ की तारीफ शुरू की। माँ प्रसन्न हो जाएगी, क्षमा कर देगी। देखिए कन्हैया माँ की खुशामद कर रहे हैं।

कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया माँ ने। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी कोई माँ नहीं सुन सकी। आंखों में आंसू आ गए कन्हैया के, कहने लगे माँ मैं समझ गया बात क्या है, ये माखन की बात नहीं, ये माखन का तो तुमने बहाना लिया है, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान गया।

सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो रे। हमने आपसे कहा ना, थोड़ा लंबा चौड़ा भजन है। हमारे सभी श्रोताओं के मध्य में प्रस्तुत किए गए है उजाला रेडियो का पैगाम है। आप बेशक प्रोग्राम को सुनते रहना और सुनते ही जाना। ऐसे में एक सिलेक्शन हम आपको सुनाने वाले है नाजिया हसन की आवाज में। रिकॉर्ड का टाइटल हॉटलाइन।

Regard the title, Hotline, Nazia Zunkiwaz. Aha, oho. वैसे रेडियो के क्षेत्र पर हर कामकाज के वास्ते आप सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह में 10 बजे से लेकर दिन में 3 बजे तक फोन कर सकते हैं और नंबर है एम्स्टर्डम में 0204090807 पर 020-409-0807 पर। रेडियो के क्षेत्र पर हर कामकाज के वास्ते जैसे इश्तहार, जरूरी खबरें, खास फरमाइश, मौत की खबर या कोई भी रेडियो के कार्य के वास्ते आप हमें डायल कर सकते हैं। The Heart of Millions, द माइटी मुकेश की आवाज। हम तो तेरे आशिक है सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे ना माने। मैं तो हमेशा कहता हूं हम तो तेरे आशिक है, लेकिन तुम मानते नहीं हो। लीजिए ये सिलेक्शन हम पेश कर रहे हैं हमारे सभी सुनने वालों के वास्ते। द हार्ट ऑफ मिलियंस, द माइटी मुकेश, हम तो तेरे आशिक।

0: होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
1: होठों पे सच्चाई रहती है।
2: मुकेश, जो आप सबके प्रिय गायक थे, मेरे बड़े भैया थे। मुकेश भैया एक महान कलाकार थे, एक महान आत्मा थे और बहुत प्यारे भैया थे। कोई है जो उनकी याद में बेचैन नहीं? जब जब पुरानी बातें याद आती हैं तो आंखें भर आती हैं। उनके दिल से निकली हुई इस पुकार को भला कौन

ताली ताक जुम्मी ताक ताली ताक जुम्मी ताक दाला आम ताक जुगी ताक तादी के ने ताक नाक ताक जुम्मी ताक नाक नाक जुम्मी ताक नाक नाक जुम्मी ताक नाक नाक जम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को कुदारी ता कुदारी के ने ताली तारी ता जग तारी ता जाने जाने को कुदारी ता कुदारी के ने जम

ताली ताक धुम ताक ताली ताक धुम ताक धाला आम को ताक धुम ताक ताली के नेतू ताक नाक ताक धुम ताक नाक नाक धुम ताक नाक नाक धुम ताक नाक नाक जाम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को कुदारी ता कुदारी के ने ताली धुम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को कुदारी ता कुदारी के ने जाम तारी

0: dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: Dokter ji, please, ek baat sunti jaiye, bas ek baat, dokter saab.
2: Kahiye.
1: वो जो आपने मेरे लिए दुआ की थी ना, जरूर सच्चे दिल से की होगी। भगवान ने सुन ली है और मुझे हो गया है।
2: क्या हो गया है?
1: मुझे प्यार हो गया है।
2: अच्छा, मुबारक हो।
1: लेकिन आपने ये तो पूछा ही नहीं, किससे?
2: अरे हाँ, ये तो मैं पूछने भूल गई, किससे?
1: जी वो,
2: बोली बोली, कौन है वो खुशनसीब?
1: जी वो खुशनसीब आप ही है।
2: थैंक यू वेरी मच। माफ करना, मुझे कोई भूख नहीं।
1: सुनिए, ये भूख वाली मोहब्बत बिल्कुल नहीं है।
3: ओए चान जी।

हे सुन वालों, मैं हूं आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।